इसका एफएम कवा ओलंगो पंगम तन कुछ आउंगा पर खरमा कुछ वो जैसे का के रादो के कवया तो कखई से पंगा कुछ दे ओलंगो एम तन चोंगा बकवांग है तेगे कन वो जैसे कुछ दे गेम तो कोई आउंगा बोले नवां कोई सा कुछ से का तेगे का वो कन वो जैसे कुछ दे लूंगा सा मासी दे लूंगा सा के दुबे के स्कूल गनी कुना अरे नई पंगा बम तने ना सिंध के दुबे के चुकुना तने ना लूंगा सा वैसे लेके अदबा आकाल तो हूँ या वो स्कूलों लोग सा है कि चुकना को कवाय दुबे आची है चुकना पंगा बाते ने ना सिंग अमन हूँ ओकुन कवाय अमन हूँ लोग सा के चुकना कवाय चिंग आउट ले पंगा मुझे से ले लोग सा कागु चुआ मुझे नूं ता कनु से कागु उन कम को से ओको मसिंग दुबे के लोग सा कनी कुना वैसे लेके स्कूलें अम तगते ने ना कुआं दे कनु से आंगुन दबा कम ता सिंग अमन ओकुन कवाय ओ आ सिंग काजीजिकांग कोर्टल नुई आंग स्कूल आकु मिसेंग नबा पंगबा सिंग यमन खुलुंग सा आ सिंग यमन खु वा स्कूल जिको मा ओ आ सिंग यमन खु वा स्कूल का वचिंग गाउ थुले पंगबा कन उजि सिम गु सिम नै तगे कन दब आंगु कम आ सिंग आ वक्त ताई कन उलुजि से कावा को कुले कुने कागु कम थमु गदा पंगबा आंगु कम दा आ सिंग अमन खु आ सिंग आंगु कम दा सिंग अन कन उजि से को वा स्कूल मा से तगे काजीजिकांग हे को दब आ सेशुना जिचाम क्वासिदे कवा वोले मुलि थ्वय खाखा थमाखै दं खदिमनु पंगा बातेन नासिं देबे कने को खमन अमन खोसिं गे नुसे कने खुना कवा चाउ हु ओस्कुलम चिमा पंगा बा चाउ हु जला वचिगे बे चोंग ला गु नंगो मासो तें दुतंग वोलम

0: اكس كا اف ام كوا ولا نو ام تنو كتشو او نو برخرمو كو سوجي سي كا كي رادو كي كويا تو كاكاي سي بانو كوي كاي كوا رادو كي نمرو يا وني تن سيفا بن نخ اف ام ونم تو كوي او نو ولا نو تما سيدي كا وا امن هم افلا فلا نو كوكوما وكا وا امن هم سيان كوكوما कि कनुलुजे से वो अच्छी कम तंचु कोई अंगो लांग गोई सा कभी जिगां कोंग का के अप्रोहम ना कोंग ना ता मासे दे कोंग कन गु सुपा के कभी तू आकाई से अगो से दे वोलंग ने को ये तंचु ना मासे दे के का कोंग है वोलंग ने को मासे दे के आ कुकुमा अमन होसिंग कन्वे अतु कोई वो क्लिनिक की वो कन्वे अतु हविगें जी वो सिंग अंकि कुकुमा के सुवंचुआ ना वो चिके मतलब जो कोई अंगो वाला हम कोई ऐसा कोई जिसे काल के रातो के कभी तो कई से पंगो को सिद्ध के मैं को मिशन ना बा नेह आते चिके तीने आते चिके कोई मतलब जो ना बा हम कोई ऐसा कोई जिसे काल के वो लंगो कौन है के मासे दे कन्नू से कभी तो कई से कौन है दे कवो वो लंगो इको ये मतलब जो ना बा को सा कोई जिगा कौन काल के रातो ता कोई सिद्ध के वो लंगो इको मतलब जो गुमना बा को सा चिमन काया कि कोई अलग को प्रोग्राम ना हम तो कोई मो का वो लंग जी चांग को सारे जीवन का कि का वो रेस थाई का नुसे से उसे देगी वो लंग जी चांग को ना देगी अमन होसे ना को कुमा वो अमन को पल पल ना को कुमा का नुसे को मा कि आप अंगा बासिंग कि का नुसे से आ तू तू कोई अपल पल ना को कुमा का नुसे आ तू वो क्लिनिक की कि मासी देगी ना वे के चुआ क्लिनिक को अंदर वाले चुको मावा क्लिनिक को आप अंगा द पंगा बागो से कि अमन होसे ना को कुमा के मौंग मासो तंदु तंग ब ओलांग
1: awushwele umntana omuntu emhlabeni akunamuntu owafika nomuntu ngiyabonga wangenza umuntu